सैल पत्थर में जंतु पाए ताकारज गागे कर तरिया। मेरे माधो जी सत्संग तमले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सदवंता कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रज संभाहे ठाकर काहे मन भो करिया। उड़े उड़ावे सको साथ पाशे बचरे शरिया, तिन कौन कलावे कौन चुगावे मन में सिमरन करिया। साव निधान दास अष्ट सिधान ठाकर करतल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमागम पारा। सब त्यावै सब त्यावै तुझी, हर सच्चे सिजन हारा। सब जीयत मारे जी तू, जिया का दा तारा। हर त्यावो संतो जी सब दू विसारन हारा। हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सब निरंतर जी, हरे को पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विराना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हो तुद बिने अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आप खाना। जो सेवै तुझे जन नानक तिन कुर्बान। हर त्यावै हर त्यावै तुझे, से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त से मुक्त पै जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जमकी फांसी। जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी, तिनका पो सब गवासी। जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूस मासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

प्यासा तोर पर घीरे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो मर जाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आबाद है मुझे उबरिये मरण काल का त्रास निवरिये

चौपाई मैं नांग नेशा प्रथम बनाऊ किशन विशन कबू न त्याऊ कान सुने पहचान तिन सो लिव लागी मोरी पगिन सो महाकाल रखवार हमारो मान लो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाएंगे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सतर हमारे मरिया

जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन द्वार तो है। अपना जान करो प्रतिपारा, तुम साए मैं किंकर धारा। दास जान दे हाथो भारो, हमरे सब बैरियन संगारो।

आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईयां शब्दो तंगावो हरि केरा मन जनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले

गुरु की संगत रूपी धोबी घाट ते लै आउंदे ने जिवें उह कपड़े धोण जांदी है। सिख इत्थे अपने मन दे उत्ते अपनी मत दे उत्ते जिहड़ी मैल लगी है उहनूं धोण लई इस धोबी घाट दे उत्ते आ जांदा। इहनूं तुसीं कहिंदे हो भरिया हथ पैर तन दे पाणी धोता उतरस खे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लईऐ ओ धोए। एक वारी सारे आखिए भरिया मत पापा कै संग भरिया मत पापा कै संग।

सहज अव्वल धूड़ मनी गाड़ी चालती जिवें ओ धोबण सारे मैले कपड़े गड्ढे ते लद के ते अगे अगे तोरदी ए नाल नाल शमक पड़ के आप तुरदी ए इस तरह हिचै ता प्रेम कै चाबु कुमारो जदों मेरा मन आलस करे ते मैं इनू गुरमत दा चाबक विखा के ऐ गुरु रूपी धोबी घाट दे उत्ते लै आवां। पीछे ले कर तिनका हांकती जैसे पनकत थ्रू टट हांकती। ए जड़ा थ्रू टट है ना ए है एक इस तरह की मूह चो आवाज कढ़नी जिदे नाल पशु थोड़े जे कन खड़े कर जांदे ने भी मालक मैनू थोड़ा तेज तुरन वास्ते कह रहा है। वह जे मैं इत्थे तुहानू उस तरह करके विखांगा वह अच्छा नहीं लगेगा। वह एक डिचकर है पशुआं नू तोरन वास्ते। जैसे पन कत पन जमा कत पन जमा घट पन मैंने पानी घट मैंने घाट पानी घाट मींज धोबी घाट। जिवें ओ धोबण धोबी घाट वाले पासे अपने बल्द नू हिक के लजांदी है जैसे पनकत थ्रू टट हांकती सर धोवन चाली लाडली। इसे तरह सतसंग गुरु रूपी सरोवर ते ए लाडली जीव इस्त्री अपने मन तो अपनी मत तो वकारां दी मैल नू धोण वास्ते जा रही है क्योंकि ए धोबी धोवै बिरह बराता। ओ धोबी ते कदी कदी पोस्टपोंड कर देंदा भी परसों मिलणगे चौथ मिलणगे कपड़े बड़े ने ओनू कले कले कपड़े नू गिला करके ते फिर ओनू कसाना पैंदा है पटका मारना पैंदा है। पर ए जेड़ा धोबी है ए भावें कपड़े हजारां जीव रूपी कपड़े होण कपड़ रूप सुहावना उहनां नू कट्ठा ही पटका मारन दे समर्थ है ओनू कला कला नहीं धोना पैंदा। इस वास्ते धोबी धोवै बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता भनत नाम देओ राम रहया अपने भगत पर कर दया। ये अकाल पुरख वैगुरु व्यापक है ते अपने भगत पर कर दया मेरे ते भी ये दया कर भी मैं भी इस धोबी घाट ते आउंदा रवां इस सरोवर ते आउंदा रवां और मेरी वकारां दी मैल मत तो मेरे मन तो तुर जाए धुप जाए मैं भी कां तो बगले तो हंस बन जावां। एक दिन दी गल है संगत जी बई भाई साहब गुरदास जी परिक्रमा विच जा रहे सन अगों पांच सत गुरसिख उन्हां नू मिल पए उन्हां दा पंथ विच अदब बड़ा सी सत्कार बड़ा सी ते उदों ना हुण ते असीं संकीर्ण बड़े हो गए हां उदों गुरसिख एक दूजे नू झुक के इदां सत्कार भी कर देंदे सन हुण ते स्यापा पै जाणा है।

आंगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे।

नमः। अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेह तन माहि मिटावो। सिमरो जा

स्नेही जेह प्रसाद रावला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जेह प्रसाद रे सगल छिद्र ढाकै मन सरणी पार ठाक गुरु प्रभु ताकै जेह प्रसाद को ना पहुचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ता की भगत करेह जेह प्रसाद

सहज साधक संग बसे थान ऊचे साधु कै संग महल पहुचे साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उधारे सात

संग सफल जनम। साधक संग नहीं कछ गाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साधक संग रूहत हरे, साधक गए संग नरक पर हरे। साधक संग इहा हुआ सुहेला, साध संग बिछरुत हर मेला। जो

गुण गाओ। साधक संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधक संग लगे प्रभु मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग पै अज्ञाकारी, साध संगत पही हमारी। साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुनहे ते तब खियाने। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा हुई ते

नमः। ब्रह्मज्ञानी कै नाहीं तंदा, ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्मज्ञानी कै होए सुफला, ब्रह्मज्ञानी सुफल फला। ब्रह्मज्ञानी संग सगले उदाहरण, ब्रह्मज्ञानी जपै सगल संसार।

तनि सलोक उरतार है जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक पर सगल निस्तारे अष्टपदी।

प्रभ सोए कई कोड़ पार ब्रह्म के दास तिन हो दया तुम प्रगास कई कोड़ तत के बेते सदा निहारे को नेत्रे

नैन भेख ठाकुर का रंग सत्संग बिनसे सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे पाप जपिए हरबिंद।

लपट रहे रस डोभी मतंग। राम नाम जब हृदय माहे नानक पासे ती कर जाहे। जिस वखर को लै तू आया राम नाम संतन कर पाया। तज मान लेहो मान बोल राम नाम हृदय में तोल। लाद खे बसंते संग।

चरण साध के तो होए तो हे पीवर प्रसाद को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान साध सेवा बड़ भागी पाइये साध संग हर कीर तुन गाइये अनक बिगन ते साधु राखे हर गुण गाये अमृत रस जाखे ओट गहि संत हे दरियाया सर्व सुख नानक तेह पायो मृतक कौ जीवालन हार भूखे कौ देवतिया दा हर

न जानो। आठ पहर प्रभु से हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तन की ओटले हे मान तन अपना तिन जन देह जिन जन अपना प्रभु बचाता सो जन सर्ब थोक का दाता तिसकी सरन सर्ब सुख पाव तिस कै दरस सब पाप मिटावे अवर सियान सगली चार तिस जन की दू सेवा लाग आमन जान होवी तेरा नाम तिस जन कह पूजो सत पैर सलोक सत पुरख जन जानिया सतगुर तिस का नाम तिस कै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी

ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म जन जन मह पार, ब्रह्म एक आव नहीं कछ परम, सहस सियान पलया न जाइये, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइये, सफल दर्शन।

न पाई। अनक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हृदय सिमर है। सत बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने।

से पाओ चुका निरपाव हो बसे सगल ब्याज मंत्र खै न से जिसका साधन कृपा धारी साध संग जब नाम रारी थित पाई चुके ब्रह्म गमन सुन नानक हर हर जा श्रवण निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही।

नाम हरवाथ एह तन संचो हो भो भगवंत संजना काले मरमंत एकाश राख मन माए सर्व रोग नानक मिट जाए। जिस धन को चार कुंड उठतावे सो धन हर सेवा ते पावे। जिस सुख कौ नित बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा कौ करहे भली करनी सा शोभा परिहर की सरणी। अनक पावी रोग न जाए रोग मिटे हर वखत लाए।

मन पाई। बहु भोजन कापर संगीत रहना जपती, हर हर नीत भली सो करनी, सो बावंत हिरदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभु देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास रोग, सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि, आवापन किया नानक आपे ही प्रजावस्पति। जब अकार एहु कहना दृष्टे ता पाप पुन, तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाध, तब वैर विरोध के संकमाद। जब

सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देख, ससियर सूर नक्षत्र मैं एक, बाणी प्रभु की सबको बोले, आपे अडोल न कब हूँ डोले। सर्व कला कर खेले खेल बोल न पाइये, गुरु बोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, धार हो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मह हो विश्वास। संजना का पेखन सब ब्रह्म, संजना के हृदय सब धर्म। संत जना सुनहे शुभ वचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिसकी यह रहत, सात बहन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बार पियो ही, नानक दर्शन देख सब ओही, आप सद किया सब साध तिस।

कर्ता पुरुष निर्भय निर्भैर अकाल मूरत अजूनी सहभा गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचाए सोच न हो वाई जे सोची लखवार चुपाए चुप न हो वाई जे लाए रहा लिवतार।

है, गावा को जीला फिर दे है, गावा को जपद सदूर, गावा को वेख हद्रह दूर, कथना कथि न आवा तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट, दिंदा दे लेंदे तक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिगसै विप्रवाह, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाहु अपार, आखे मंगे देहे देहे, दात करे दातार, फिर के अगे रखिया जित दसा दरबार, महाओं के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाउ वड़ियाई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी भोख द्वार, नानक एवै जानिया सब आपे सचियार, तापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेबिया तिन पाया मान, नानक गावियै गुणी निधान, गावियै सुनियै मन रखियै भाहु, दुख पा हर सुख घर लै जाए, गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रहया समाई, गुर ईसर गुरु गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, तीर्थ नावा जेत सभावा मिण भाने के नाहे करी, जेती सृठ पाई वेखा मिण करमा के मिलै लई, मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सुख सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा मिच जानिया नाल चलै सब कोए, चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछा के, कीटांदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोए करे, सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया धरत धवल आकाश,

विचार कहते कब तुटे बेकार कहते ले ले मुकर पाहे कहते मूर्खा ही खाहे कहते आ दुख भूख सद मारे भे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए ओ राख ना सकै कोहे जे को खाए के आखण पाए ओ जाने जितियां मोह खाए आपे जाने आपे दे आखे से भे के ही के।

गावे तहनु पौन पाणी बै संतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देव त्या धर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पंडित रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतन पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल बरपंडा कार कर रखे तारे सही तुदनु गावे जोत भावन रते तेरे भगत रसाले।

अवेस। एक दूजी भाव लाखों है लाखों वह लाख वीस, लाखला गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीस। ए त्राह पद पावड़िया चढ़िया हुए एकीस, सुन गल्ला आकाश की कीटा आईरीस। नानक नदरी पाईया कूड़ी कूड़ा ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देना जोर। जोर ना जीवन मरण है जोर, जोर ना राज माल मनसोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस सत जोर कर वेख्या सोहे, नानक उत्तम नीच ना कोहे। राती रुती थिती वार, पवन पाणी अग्नि पाताल। तिसवी धरती थाप रखी धर्मसाल, तिसवी जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथे सोहन पंच प्रमाण, नदरी कर्म पवै निशान। कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश। केते बरमे घाट घड़िए रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुधनाथ, केते केते देवी वेश। केते देव दान मुन, केते केते रतन समंद। केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरेंद। केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे राध विनोद गुड आनंद। सर्म खंड की बाणी रूप, तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप। ताकिया गल्ला गतिया न जाहे, जे को कह पिछे पछताए। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरा सिदा की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर ना कोई होर। तिथे जोद महाबल सूर, तिन मह राम रहया भरपूर। तिथे सीतो सीता महमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे। ना ओहे मरना ठागे जाहे, जिनके राम वसे मन माहे। तिथे भगत वसे के लो, करे आनंद सच्चा मन सोए। सचखंड वसे निरंकार, घर घर वेखे नदर निहाल। तिथे खंड मंडल ब्रह्मांड, जे को कथे ता अंत ना अंत। तथा लो लो आकार, जेव जेव हुकम तवैत वकार। विखे विकसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जत पाहरा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद अथियार। पाओ खला अगंत बताओ, भांडा पाओ अमृत ढाल।

रंगे पार तन दोख किश पाप न फेड़े जम जंदार न आवे नेड़े तृष्णा अगन प्रभा बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई।

अपने आप साजियो अपने रचनाओ दुई खर साजिए कर अस निठो चाओ दाता करता है आपको तुस देवे करे पसाओ तू जानो सबसे दिल ऐसा जिंद कवाओ कर अस निठो चाओ।

तरंगे भाई ये जेड़ा भव सागर है ना जिदे विच पानी पंकज तिन है किया जिदे विच हजूर कहिंदे ने तित सरवरड है पहिले निवासा पानी पावक तिन है किया पंकजो मोह पग नहीं चाले हम देखा तै डूबी अले जे वकारा दे सागर नू त्रिशना क्रोध हंसेत लोभ को पचारे नदियां अग इत्याद ते उदा तरीका भी गुरु दी संगत विच आके ते गुरु गुरु जपिए की करिए निरपौ नाम जपहु ओ नाम जेड़ा निरपौ कर देंदा हर रंगे मैंने हरी दे प्यार दे रंग विच भिज के पर धन दोख किच पाप न फेड़े जम जंदार न आवे नेड़े जेड़ा बंदना करेगा अकाल पुरख दे चरना च गुरु दे चरना च ओनू प्राय धन आदक दा जेड़ा दुख है पर धन दोख किच पाप ना फेड़े ओनू ए नहीं व्यापदा ये भी बड़ा वड्डा दुख है ना कदी आत्म मंथन करियो मनुख मेरे वाक्य वाल ध्यान दिया जे सेंटेंस वाल ध्यान दिया जे मनुख अपने दुखां तो उतना विचलत नहीं जितना दूजे दे सुखां तो दुखी है ये बड़ी वड्डी समस्या है इहनू हशद कहिंदे ने इहनू ईरखा कहिंदे ने इहनू गुरबाणी तात पराई कहिंदी है जिस दे अंदर तात पराई होवे तिस दा कदे ना होवी भला तू सारयां दा भला लोच तेरा भला होवेगा महाराज ने जमानत दिती है कि पर का बुरा ना रख हो चीत कहन लगे मैं तेनू लिख के गरंटी दे देना जा फिर अज तो बाद तुम को दुख नहीं पाई मीत पर तन दोख किछ पाप ना फेड़े जम जंदार जेडे भयानक जम ने करड़े जम ने ना आवे नेरे ओ तेरे नेड़े भी नहीं आउणगे जम नहीं आवे नेड़े मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे समाप्ति वाल चलिए तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई ये जड़ी तृष्णा दी अग है वह फिर आप वाहगुरु अंदरों ना गुरु दे राही नाम दे के ओनू बुझा देंदा असल विच तृष्णा भी अंदर है ते जेड़े नाम जलन वाले ने बुझना है ना जिवें ना एक छोटी जी पर्दा होवे कंध होवे चार इंची मान लो इधर अग लगी है ते चार इंची कंध दे इस पासे च बच्चा है पानी दा किड्डा सौखा काम है भी बाल्टी भरो ते डोलो परो ते डोलो ते अग बुझ जाए पर डोल दे नहीं बहरूनी अग सत बगाने घर विच लगी होवे साडी नाम ही बनदी होवे ना गवांडी नाल उहदे घर नूं अग लग जाए ते बंदा बाल्टियां भर भर के पानी दियां डोलदा इहदा विचारे दा घर बच जाए ते अपना घर जिहड़ा सड़ रहा है हजूर कहिंदे ने निकट नीर इह शब्द शुरू हुंदा है विख्या व्यापिया सगल संसार विख्या लै डूबी परिवार सारे इंद्रिया नूं लै डुबदी विख्या व्यापिया सगल संसार विख्या लै डूबी परिवार रे नर नाव चौड़ कत बोड़ी ओ मैं पानी ते लोकां दीआं किश्तियां डुबदीआं वेखीआं ने तू ते रड़े ते डुबी फिरना हरसों तोड़ विख्या संग जोड़ी सोर नर दादे इथों तक देवते मनुख ये तृष्णा दी अग विच सड़ रहे ने लागी आग मारे की करिए आखन लगे पानी डोल कह लगे पानी कित्थे है कह लगे निकट नीर पस पीवस ना चाग महाराज पानी किवें डोलदा है हजूर कह लगे चेतत चेतत निकस्यो नीर सो जल निर्मल कथत कबीर वो चेता कर करके फुहारे फुटते ने फिर बुझ जाती है

मनै मार्ग ठाक न पाए, मनै पद स्यों प्रगट जाए, मनै मग न चलै पंथ, मनै धर्म सिति संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, मनै पावे मोख द्वार, मनै

मन कोय। पंच प्रवान पंच प्रधान हो पंचे पाव है दर्ग है मान हो पंचाय सुह है दर राजान पंचा का गुरे ध्यान जे को कहे करे विचार।

कहा विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख भाव, असंख पूजा असंख तप ताऊ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जुगमन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार।

सोए। जेवड़े आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुम आए, केते मंगे जो दे पार, केते अगंत नहीं विचार।

तीर्थ नाले। गावह जोत महामल सूरा गावह खाणी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे। सही तुदनों गावह जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले।

नाई ऐ पियो सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जनसी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुकम न करना जाई सो पात साहो साह पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पद।

केते रतन समुंदर, केतिया खाणी केतिया बाणी केते पांद रेंदा, केतिया सुरदे सेव केते नानक अंत नांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोदय कोड़े आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे, जे को कहे पिछे पिछताए, तिथे घड़िए सुरत मत मन बोध, तिथे घड़िए सुरां सिदां की सोध,

सतगुर प्रसाद सुधर तेरा किया सो घर के हजित वै सर्व समाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा किते तेरे वावन हारे किते तेरे राग परि सौ कही है किते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पवन पाणी बै संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चेत गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे

ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले और केते तुदनो गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पियो सी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जनसी माया जिन उपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावे सोई कर सी भरुकम ना करना जाई सो पात साहो सा पात साहिब नानक रैन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब को केवड वड्डा डीठा हो कीमत पाए ना कहा जाए कहने वाले तेरे रह समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा किता केवड चीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कह न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाई आए सिद्धा पुरखा किया वड्याई आ तुद बिना सिद्धि किने ना पाई आ करम मिले ना ही ठाक रहाई आखण वाला क्या विचारा सिवती भरे तेरे भंडारा जे तू दे तिसे क्या चारा नानक सच सवारणा रा।

नाय रहाओ। साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सामिल के आखन पाहे, वड्डा ना होवे घाट ना जाए।

जाप तप संयम धर्म नाक माया सेवा साधना जानिया हर राया कहो नानक नीच करमा शरण परे की राखो शरमा सोलारा गौड़ी देव की महला पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद जय घर कीर्ति आखिया करते काहे विचारो तेत घर गावो सोला शिवरो सृजनहारो तुम गावो मेरे नृपव का सोहला वारी जित सोहला सदा सुख होय राम नित नित जी अड़ संभाली अन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कमन सुमार संबत साहा लिखे आव मिल कर पावो तेल देहो सजने आसीसड़िया ज्यो वे साहिब स्यों मेल कर कर हो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हरा सिमरिय नानक से दया वन रागासा महला पहला

0: सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती कोड़े प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती कोड़े
1: राज
0: मिल खुशियां कणी त्याई मुख न मोड़े राज मिल खुशियां कणी त्याई मुख न मोड़े टाडी दर पर मंगना दर कदे न छोड़े टाडी दर पर मंगना दर कदे न छोड़े नानक मंथन चाओ एहो नित प्रभु को लोड़े नानक मंथन चाओ एहो नित प्रभु को लोड़े
1: सतगुर आयो
0: शरण द्वारी
1: मिले सुख नाम हर शुभ चिंता नाए हमारी सतगुर आयो
0: शरण द्वारी
1: मिले सुख नाम हर शुभ चिंता नाए हमारी धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर उच्च भगवान नानक की ब्या मेन अपनी भगती लाए मांगो दान ठाकुर धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर उच्च भगवान नानक की ब्या मेन अपनी भगती लाए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज धन धन बाबा नंद सिंह महाराज कोट कोट प्रणाम भुल चक माफ तिर चरण कमला पास बहुत बहुत धन्यवाद नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने स्वादा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोले सोनिया सत श्री अकाल
2: सतनाम श्री वाहेगुरु जीओ तुम दाते ठाकर प्रत पालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रत पालो हम मार्ग तुमरे तारे तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम्हें सजन सुहेले राखो राखण हार दयाल नानक करके गोले सजन सच्चा पातशाह सिरसाह दे साहू जिस पास बैठिया सोही है

का सिमरन छोड़िया माया हाथ बेकाना रहाओ मात पिता भाई सुतवंता ताकि रस लपटाना जोवन धन प्रभ ताकै मद में एहनस रहे दीवाना दीन दयाल सदा दुख भंजन ता स्यों मन न लगाना जन नानक कूटन में किन्हू गुरमुख हुए पछाना दीन दयाल सदा दुख भंजन